0: नैना जी, आज मैं छुट्टा वाला डांस करूंगा, ठीक है? कैसा लगा? क्या कड़वा लगा? नहीं
1: यार।